तेरा जरे जरे विच वासा तेरा भगता नूं परवासा टठे दिल नूं दिओ दलासा मन लो अरजां मेरियां ओ टिया सरा तक लिया तेरे चरणा दा बाकी सब बेटा।

कितने तरह के साजां की आवाज प्राचीन काल विच साजां दे जन्मदाते भगत लोग होए ने उन्होंने के धुना सी अंदर सुन दे पया उन्होंने बार प्रगट करने की कोशिश की वाजे नाग अनेक असंता केते वावन हारे केते राग परिसो कहीं केते गावन हारे पहले ते वाहेगुरु आखण का

रामदे अल्लाह हर धुन दा अपना प्रताप जैसे नाभि नाल टकराते पहले पवन दे टकराते नाभ खोली से हूँ धुन दे टकराते नाभ पूरी कर जाए धुन जो धुनि तो उठे से कन्ना दे राही वापस आई मदमा पसंती बन के जैसी फिर धुनि नाल टकरा दिए परा बन दिए नाभ पूरी खुल जाती है तन ते जिंदा रहिंदा मन दी मौत जैसे धुन धुनि नाल टकरा दी है मन दी मौत हो जाती है तन ते जिंदा ऐसा मनुख परमात्मा दे तल ते जींदा है पर जैसे मन की मौत आती है कई भगत ऐलानिया कह उठते हैं जैसे कबीर कहते हैं सच भयो अन कते न जाय मैं सच हो गया मैं परमात्मा का रूप हो गया अब तो जाय चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक वे हैं कोई न सके पछाने इस अवस्था ते पहुंचे होया ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख वाहेगुरु वाहेगुरु जपदा नहीं बल्कि एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जनपना जिमें प्राण चलते ने वाहेगुरु की धुन उसके प्राण च तो वाहेगुरु का रूप हो जाता है ईश्वर का रूप हो जाता है तो वाहेगुरु का रूप ईश्वर का रूप हो जाता है।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे कार औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं, इन्हां सारिया ही दुखों का जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है के मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। ऐथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ।

0: to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुरकी बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है उह तां दुखी है। अनेक तरह के होर दुख हैं। इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: अपन विचार है
1: दोहा श्रेया का आप स्वामी
0: खेले बिकसे अंतरजामी
1: जो पावे सो कार करावे
0: नानक दृष्टि अवर न आवे
1: ओहो मनुख ते क्या होए आवे
0: ज्योतिष पावे सोई करावे
1: इसके हाथ होए ता सब पिछले
0: ज्योतिष पावे सोई करे
1: मन जानत बिखिया महरच है
0: जे जानते अपने आप बचे
1: भरमे भूला दह दिस तावे
0: नमक माहे चार कुंड फिर आवे
1: कर कृपा जिस अपनी भक्त दे
0: नानक ते जन नाम मिले
1: खिनवे नीच कीट को राज
0: पार ब्रह्म गरीब नवाज
1: जा का दृष्ट कछु न आवे
0: जिस तत्काल दर दिस प्रगटावे
1: जाको अपनी करे बख्शीस
0: ताका लेखा ना करे जगदीश
1: जियो पिंड सब तिसकी रास
0: कट पूर्ण परम प्रगास
1: अपनी बनत आप बनाई
0: नानक जीवे देख बढ़ाई
1: इसका बल ना ही इस हाथ
0: कल करावन सर्व को नाथ
1: आज्ञाकारी बपरा जियो
0: ज्योत सभावे सोई फन थी
1: अब हूँ ऊंच नीच मैं बस है
0: अब हूँ सोग हर करंग हस है
1: अब हूँ निंद चिंद देव हार
0: अब हूँ उब आकाश प्याल
1: अब हूँ बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: अब हूँ नृत्य करे बहुपांत
0: अब हूँ सोए रहे दिन रात
1: अब हूँ महाक्रोध विकराल
0: कब हूँ सर्व की होतर वार
1: कब हूँ होए बह बड़ राजा
0: कब हूँ भिखारी नीच का साजा
1: कब हूँ अब कीर्त में आवे
0: कब हूँ पला पला कहावे
1: ज्यो प्रभु राखे ते भी रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे
1: कब हूँ होए पंडित करे बख्यान
0: कब हूँ मोहन तारी लावे ध्यान
1: कब हूँ तट तीर्थ स्नान
0: कब हूँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कब हूँ पीठ हस्त पतंग होए दिया
0: अनक जौन परमिया परमिया
1: नाना रूप ज्यो सुवंगी दिखावे
0: ज्यो प्रभु पावे तवे न जावे
1: ज्योति पावे सोई होए
0: नानक दूजा अवर न कोए
1: कब हूँ साध संगति पावे
0: स्थान ते बौर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रते एक रंग
0: सदा बसै पर ब्रह्म के संग
1: ज्यों जल मह जल आए कटाना
0: ज्योति संग ज्योत समाना
1: मिट गए गबन पाए विश्राम
0: नानक प्रभु के सद कुर्बान श्लोक
1: सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले
0: बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नक पाती होवत स्वान
1: जो जान है मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे बो जोन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
1: धनवंत होए कर गर्भावे
0: तरण समान का चंग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: पर भीतरता का होए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: होए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारी
0: शरम पावे सकले बरथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे कवे
1: आप को जो भला कहावे
0: सिर भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझ ते कछु होए
0: जब इस को सुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: प्रभु कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु को साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लख कोट तावे
0: रतन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग बिखिया के करे
0: नैत बतावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: प्रभागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आप एका पया ने
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कुछ उसका करने हार
1: कुस्ते बिन कहो किस होए
0: हाथ नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद के नै बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मत एक ने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अति सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुने सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत के दुखन आर्जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत हो ही मलीन
0: संत के दुखन शोभा दे ही
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत के दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग नंदक मीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जलै
0: संत के दुखन सब को छलै
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀ ਕਤ ਪਾਰੇ
1: ਸੰਤ ਕਾ ਨਿਤ

0: महाअततायी
1: संत का निंदक के टिक न पाई
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजो
0: संत के निंदा दुख मैं दुख
1: नानक सत पावे ता उसका भी होय मोख
0: संत का दुखी सदा पवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लगे
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख न सुख ते तरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
1: नानक सत पावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
1: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
0: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइए
1: संत का दुखी उजड़ पाइए
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा
1: जो सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस नाही
1: अपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार
1: नानक सत पावे ता लय उबार
0: संत का दुखी इयों बिल लाए
1: जो जल बे हून मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: जो बवार तेरे खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
0: कीर्तन नित का तो रही पया
1: नानक जो तिस पावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइए
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए
0: संत के दुखी की पूजा ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्टि कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब करते इसकी हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रापी उसत करो दिन रात
1: तिसे त्यागो सास गिरा
0: सब कछ वर्त तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
1: वडपा की नानक जन से श्लोक
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
1: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
0: मनुख की टीक बिरसी सब जान
1: जीवन पौ एक है भगवान
0: जिसके दिया रह अगाई
1: और न तृष्णा लागे आए
0: मारे रखे एको आप
1: मानक कह कृष्णा ही हाथ
0: जिसका हुक्म भू सुख होए
1: जिसका नाम रख कंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिघन न लागे कोए
0: उसत मन में कर निरंकार
1: कर मन मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा सहेला कर ले जियो
0: नैनो भेक ठाकुर का रंग
1: सह संग तन सह सब संग
0: चरण चलो मार्ग गोविंद
1: मिटा पाप जप ये हर बिंद
0: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर दरगाह नानक उजल मथा
0: बड़ भागी ते जन जग माहे
1: सदा सदा हर के गुण गाहे
0: राम नाम जो करे विचार
1: शीतल मंतक नहीं संसार
0: मन तन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछाने
1: तुत कियो सोजी जाने
0: नाम संग जिसका मन मानिया
1: नानक तने निरंजन जाने
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कहत
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
0: धन दिन कीर्तन केवल बखयान
1: तमा सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जम की फसा
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
1: नानक दसन लागे दुख
0: जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे
1: सो संत सोहेला नहीं डुलावे
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सा तैसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजया
1: प्रसाद तत् सब पूजया
0: जब देखो तब सब शमूल
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
0: मैं किस जन मैं नह किस मरे
1: अपने चलते आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
0: आपे आप सगल में आप
1: अनक जुग तरच था व्यो था
0: अवनाशी ना ही किस खंड
1: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
0: लख पे पुरख प्रताप
1: आप जपाए था नानक जाप
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
1: सगल संसार उदरा तन मंत
0: प्रभ के सेव सगल उदारन
1: प्रभ के सेवक दुख बिसारन
0: आपे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्द जप भय निहाल
0: उनकी सेवा सो ही लागे
1: जिसनो कृपा करे बट भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग
1: सदा सताप सह हर संग
0: भाई हो वैसो हो
1: करने हार पछाने सोए
0: रब का किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई
1: सुख निदान उन्हों

0: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸ ਤੇ ਵਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ
0: ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਇਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਗੋਬਰ ਪੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰ ਪੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਤਾਰ
0: ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥੰਮਨ
1: ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹਿ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰ
1: ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਦੂਤ ਸਹਿਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਲਪਟ ਰਹੋ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਤਾਜ ਮਹਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜੰਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ
0: ਅਰਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਵਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਜਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭ ਤੇ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਕਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿਆਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਪੂਜ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਰੱਬ ਅਵਨਾਸੀ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਥਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਤਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸੋ ਕਰਨਾ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਤਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਟ ਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सतधारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाकर हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को देव डाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काट थे आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बार बार बार प्रभु जपी है
0: अमृत मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: उठ बैठ सोबत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन की नी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाई
0: रबे अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे दिन की ओट लेहे
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जिन जने अपना प्रभु पछाता
0: सोजन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावहे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान पसगली छाड़
0: जिस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: जिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गावे अष्टपदी
1: सतगुर सेव की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरे
0: गुर बचनी हर नाम उचरे
1: सतगुर सिख के बंधन काटे
0: गुर का सिख बकार ते हटे
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी हे
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारे
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे
1: गुर के गृह सेवक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे
1: आप उसको कर कष न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचे सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: विश्व गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाऊ
0: नानक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर बार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: एक है आप नहीं कश परम
1: सह सियान पले आन जाई है
0: नानक ऐसा गुरवट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चमकत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: बार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर वचन करन आगामी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अक्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव है तिस लय मिलाए
1: जे पाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहूं बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुर अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणता
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक परम बहु दुख ते नासे
1: सत माही ठांड बरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिठे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याद मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: चित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभु आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप सब मीत बसारो,
0: शरण कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो प्राप समर्थ,
0: दृढ़ कर गह नाम हर बथ,
1: केहु तन संजो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वे,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखद लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते अवैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: और बिन से पूर्ण हो आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: मत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होई उदार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मर वंशत नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कमन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कमन छुटकार,
1: आस स्थिर रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू ले आने,
0: भक्त बना बो डूबे सियाने,
1: भक्ति भगत करो मन मीत,
0: निर्मल हो तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जन सदाय हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसे सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रव्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कर कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरे शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भजन करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सब त्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधेर निवलाग,
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नोसदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: जिच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: गब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भगती नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरै जे काल न भन्ने,
0: सोक्यों बिसरै जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरै जे सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरै जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरै जे अगन मह राख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरै जे बिख ते घट है,
0: जनों जनों का टूटा गंढ है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निद नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो वतनास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों पेख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दी जय कर माया,
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: प्रभ बख्शांत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: आदि पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपे सो हो पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख न

अखल धर्मंग लख करमंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पहने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तराणंग सर्वंग भूता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल चंत प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान तरमान देव भेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज।

निरुक्त स्वरूप तिरमुक्त विभूत भर भूत प्रभ सुजूत सुदाह सदावंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है उवंग आद रूप अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे।

लेखे आकार मंग अपर मंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मोल को निंदा समस्तल निवासी अजायब बिपूते गजायब अग्नि में हरियंग करियंग करी मोल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भूते स्वयं पवसभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बेपूते

एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाह दसवें तवै प्रसाद सवैये सरावग सोध समूह सिधान के देख फिर कर जोग जती के सूर सुरार दन सोध सुधाधक।

कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात नवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत शीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरा सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गना नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सधारे

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पाई संबत 1700 भणज अर्ध सास भुवन तीन कहज भादर सुधि अष्टमी रावारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

सेव सकत आप पाए क्या करता आप हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेख्या गुरमुख सह बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसन आप करे सो होवे एक सस्यों लिवे।

0: संत कर।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

0: कृत नचै सब कोय नाच नच हसै चलै से रोए उड़ ना जाही सिद्ध ना होए
1: नचन कुदम मन का चाओ नानक

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

बिना केस हेत असी जुमला रिशा पर केसा तो बिना बाकी चार निशानियां परवान नहीं। जैसे लाड़े तो बिना बरात नहीं शोभा पांदी, केसा तो बिना कड़ा कचहरा कंगा कड़ा ए शोभा नहीं पांदा। इना दी शोभा किरपान दी शोभा कड़े दी शोभा कचहरे दी शोभा कंगे दी शोभा केसा करके केस मूल ने। क्योंकि राजे परीक्षित तो सड़े देश दे केसा दा मुंडन आम चल पया सी, पानी सब तो प्रथम उसने केसा दा मुंडन उना ब्राह्मण जिना ब्राह्मणा ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपति की थी। ओ किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई ते सारे दे सारे हस पए। जनमेजे ने इना दे सिर मुन दिते, कुछ कतल कीते, बुथेरिया दे सिर मुने। इस तरह सिर नु मुन्ना मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने एक सजा ही दी। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग दसम ग्रंथ विच लिखे है। प्रथम बांध के सब के मूंड मुंडाए, उनर ए डुआ सी इस तांके लगाए, इना ब्राह्मणा नु बन के उना दे शीश मुन दिता, मुंडन कर दिता। तो उन्होंने घोर बेअदबी की थी, फिर इन्हों छोड़ दिता। इतनी वड्डी सजा देती, जिन्होंने छोटी सजा दी उन्होंने तो सजाए मौत दी, पर जिन्होंने वड्डी सजाए दी उन्होंने मुंडन किया, जीवद ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा, थोड़ा जोड़ा थोड़ा दाड़ा थोड़े केस। तो इन्होंने यह किया, पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई, हां ऐसा करना पै, ये सोग धारण करना पै। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया है। ये मुंडन सोग की निशानी, दुख की निशानी, मौत का प्रतीक से। सहजे सहजे जब आध्यात्मिक जीवन रहा ना तो मुंडन आम हो गया। जनमेजे ने कुछ ब्राह्मणा का मुंडन किया सी, इना करके इंज कह लो सारे देश का मुंडन हो गया। केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जब कोई नाम जपता है बाणी पढ़ता है तो मस्तक दे शक्ति जमा होती है, रस जमा होता है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए। केस मदद कर दें, केसा दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारिज होवे तो दस्तार मदद कर दिए। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत दे सिरमौर ने ऋषि मुनिया का रूप ने, मुखड़े का दाड़ा प्रकृति का दिता हुआ पुरश नो शिंगार है। जैसे असी देखते हैं शेरनी दे गल दे, ए लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन दे जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं। ए लंबे लंबे पंख प्रकृति का दिता होया शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा तोता कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत का दिता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष की शिंगार विच रुचि नहीं रही, इस्त्री दी ही शिंगार विच रुचि रही। क्योंकि उसने पुरुष का मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना शिंगारना आरंभ किया।